0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे खुशी बेलों सेले सोफरेशन अब मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी सीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी सीरा आउ कंक्लूड खुशी पेरगुंता सेरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हवानो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इधर पॉइस हमने मेंसाजें माका तंबा जुविंतुरी दा गोरा ला कंसेगे हते के नो हाडोमी सुसे डारे ने हने सने आन उसी तो तेवरिया बारकीरा खुशी तेरे ना यीशु क्रिस्टु निहाते ते हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवन हीरा ओला हाडोमी उन्हें मालूक सीरा तंबने मखाउ दिहन से हाउ ही ना मुरारा हाउ दिहन हने सने ओलाबेले दे अनो हाडोमी हाउ सेवन हीरा ओला हाडोमी सोसेदारे तंबे इंटरेसे उसी इतने हमुतुक ने इंटरेसे बस सोसेदारे ने मक इम्पोर्टेंट अतु लोर सोसेदारे ने बा मुरिस दिया जुवेंटुरी तेंगे सही अजेंट ट्रांसफॉर्मेटर बा बुआत ने बे मक ला दिया नु जुवेंटुरी तेंगे हातुर बुआत ने बे मक लॉस दिहन लॉस साला दिहन साला हाउ ये स्टेटमेंट तुझे आकर आते थे बस जुवेंटुरी सिरा ने सने हाउ कॉन्ट्रा हाउ निया आमन सेबा इनहिरा निया साला हाउ लॉस मबे हाउ सेला लो उजा हमने हाउ सी मबे हाउ सेला उजा हाउ निया इरेस्पोंसिबिलिटी ने हुरी कॉन्ट्रा निनिया रेस्पोंसिबिलिटी ने मकला दिया मबे हाउ कॉन्ट्रा सेबा इनहिरा निया साला हाउ लॉस मबे उजा हमने इमैच्योरिटी ने कॉन्ट्रा निया रेस्पोंसिबिलिटी ने मकाउ साला कॉन्सेप्ट टू डेमोक्रेसी इता कर हतुर बत ने मक लॉस दिहन साला इदन मक इंपोर्टेंट लेवल रियन निया या कार्गो निया एलिट Entau ni salah, ni los, kita consider ni salah mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important tetap terus. La bela, saifel alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma, how biasa tetap ane sana. How hadu milio, how ni amigu sira kritiku ni, duke hadu milio mas jadi nampak ke la kritiku. Tambah usik kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefon. Hadomi uluk susi dade ne. Jesus dia ane sene. Ola bela dia ane hadomi hau. Sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahau une kolega sira mo sawate te. Maluk juventuri sira. La bela dia nimi hadomi hau. Sebenira imla hadomi tena pogo. Briar.
0: Oke, turmai belong sele se foba itenya belong ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahau une maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bas susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahoklase. Nu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.